फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसो। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमारी या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का।

का दिन है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह की तरह आज सुबह भी भजन यात्रा प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

0: शिवा।
1: रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। मंगलवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर के आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है बजरंग बली।

है चले प्रोग्राम में आपकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अशोक घरे की आवाज में पेश किया जा रहा है और एल्बम का नाम आई तेरी शरण में।

और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये

भजो राम भजो भाई, राम भजन हीन जन्म सदा दुखदाई। राम राम राम भजो भाई, राम भजन हीन जन्म सदा दुखदाई। राम राम राम भजो, राम

की और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है। ये सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। सुन वालों चले आज मंगलवार का भजन यात्रा प्रोग्राम से आरती भजन बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: श्री हनुमान जी की आरती बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों यहां तक आज मंगलवार का भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt

राज्य की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। जरूर आप सुनते ही रहना मुकेश और गीता दत्त के आवाज में।

आवाज और गीता दत्त की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मोहम्मद रफी एंड आशा जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते

सुनो वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए, आपकी हर एक कामों काज के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: जाएगा।
1: रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में चल चल रे मुसाफिर चल।

0: करोगे एक दिन मेरे प्यार को।
1: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म में फिर वही दिल आया हूँ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में ये गाना बस सुनते ही रहना।

रफियन लता जी की आवाज में आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गई पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं चले फिल्म ताज की ओर हम आपको ले चलते हैं स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं और इसी तार की नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर भी ऐप कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है साजन की सहेली। गर्मी सा मौसम है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गए फिल्म साजन की सहेली, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए।

और कहां उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। Thames Drive 237 यार उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी महीना में एनन फियर तैयार होगा कि रेडियो SBS का प्रोग्राम उत्तराखंड शहर से बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर।

दमाई टीम के इसकी आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, ऐप भी काफी जोर तोड़ से अंदर आते हैं और बहुत से सुनने वालों है जो ऐप द्वारा भी स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं। गर्मी सा मौसम है और बहुत से सुन वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं और काफी सुन वालों होते हैं जो हॉलीडे मनाते

हमें कुछ दिनों पहले खबर किया कि वो इस वक्त वियतनाम में है, हॉलीडे मना रहे हैं और हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में सुनते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, कितने सुनने वालों हैं जो हॉलीडे पर गए हुए हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम वहां पर भी सुनते हैं जहां पर वो

बैठे हैं जो आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तलत महमूद जी की आवाज में और शमशेर बेगम की आवाज में गाना आप सुनते ही रहना, फिल्म का नाम बाबूल।

और शमशाद बेगम की आवाज में ये गाना बस पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। असरों भी थे ये गाना आपने सुना फिल्म बाबुल का और सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपको काफी पसंद आया। इंडिया भारत देश नोएडा में अरुणेश कहा कि वो हमेशा हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। अरुणेश शुक्रिया धन्यवाद, और मुझे मालूम है कि हमेशा और हमेशा आप रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं और आपकी पूरा परिवार भी, और मुझे मालूम है कि पुरानी नख़्मे भी आप लोगों को काफी पसंद है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हॉलैंड देश के अंदर में गर्मी सा मौसम है, धूप ही धूप खूब निकला हुआ है, धूप अपना काम जोर तोड़ से कर रहा है और काफी गर्मी सा मौसम 33 और 35 डिग्री के बीच में आज का तापमान होगा। और खासतौर पर सूतमेर शहर के अंदर में 23 राम अवतार भी हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। खबर किया है कि कभी कभी बहुत बिजी होता है, लेकिन बैकग्राउंड पर रेडियो SBS हमेशा और हमेशा ऑन रहता है। हाँ, प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं, काम काज में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं। 23 राम अवतार सूतमेर शहर के अंदर में। अब इसे सूतमेर शहर में भी हमारा प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा ही सुनाई देता है। प्रोविंसी साउथ होलैंड में काफी शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस द्वारा आप सुन सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको भी खबर किया कि रशीद पीरू भी हमारा प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में हमेशा भी सुनते हैं, फॉलो कर रहे हैं। शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और सभी सुनने वालों जहां जहां पर भी प्रोग्राम सुनते हैं, जरूर सुनते ही रहना। चले अब की बार गाना जो पेश होगा मन्ना दे और लता जी की आवाज में, कैदी 911। फिल्म का नाम है कैदी 911। मन्ना दे और लता जी की आवाज में ये गाना।

और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई, कैदी 911 फिल्म का नाम था, कैदी 911 उसी फिल्म का, ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनवालू 21, 22 और 23 तारीख अगस्त इसी महीना में सबसे बड़ा मिलन हॉलैंड देश के अंदर में जो सालों से होते आए हैं, इस साल होगा 21, 22 और 23 तारीख अगस्त, 21, 22 एन 23 अगस्त सुइडपार्क डेन हाग शहर के अंदर में ढेर सा स्टैंड वगैरह क्रैम्पियस रहेंगे, खाने पीने के लिए काफी सामान यहां पर रहेंगे और आपको खबर किया जा रहा है शुक्रवार 21 तारीख अगस्त फ्राइडे 21 अगस्त लाइव ऑन स्टेज लाइव पोडियम पर रहेंगे मशहूर गाने वाला त्रिनिदाद का रेमोन रामनारायण, फुल म्यूजिक ग्रुप डिले नादान के साथ एक जबरदस्त प्रोग्राम देने वाले हैं लाइव ऑन स्टेज मिलन सुमर फेस्टिवल में फ्राइडे 21 अगस्त शुक्रवार 21 तारीख अगस्त डेन हाग सुइडपार्क में voor de 42e keer de grootste Milan जो हॉलैंड देश के अंदर में ऑर्गेनाइज किया गया है वो अब होगा इसी साल में 21, 22 एंड 23 अगस्त। milansummerfestival.nl पर सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है क्राम फरहूर के लिए और खास तौर पर टिकट के लिए।

आप कोई भी प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहेंगे, जैसे कि दुक्सा कॉन्टेस्ट जो होने वाले हैं, दुक्सा कॉन्टेस्ट आप इसको स्पॉन्सर करना चाहेंगे तो मिलन समर फेस्टिवल वेबसाइट से आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी गीत पेश होगा। कल बुधवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे सुपरहिट मूवी सोहाग। सोहाग फिल्म का गीत आप सुनेंगे, एक गाना जो एक्टिंग किया है द बिग बी अमिताभ बच्चन और द लेट शशि कपूर ने। सोहाग फिल्म का नाम मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में गाना आप सुनेंगे। एक आखिरी गाना आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में सुपर हिट मूवी सोहाग और सुपर हिट सॉन्ग है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सुबह 11:30 बजे में 6 मिनट 4:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है और स्टूडियो की ओर तार किया है ग्रेस। ग्रेस भी कहा कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। दया बे प्लस रेडियो की जरिए हमारा प्रोग्राम हॉलैंडियस के बीच में मेडन नीदरलैंड में और प्रोफेंसी साउथ हॉलैंड में भी सुनाई देता है और बहुत सी सुनने वालों बस इन दिनों मौत कार में अपना गाड़ी में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों रिक्लाम आपको देना है, खबरें आपको देना है तो बोर्डम प्राइस में आपकी तमाम खबरें बस पेश किया जा रहा है। जरूर एक बार मेल कीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए या तो ऐप कीजिए या तार भी आप कर सकते हैं। तार की नंबर मेल और हमारा रेडियो SBS का ऐप जो है 24 पर अखबार एक बार होता है जब ही आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे अपना फरमाइश के बारे में, अपना तमाम खबरें के बारे में, रिक्लाम के बारे में सस्ती दामों में आपकी तमाम खबरें, तमाम रिक्लाम बस पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, जुआरी फिल्म का गीत की ओर हम आप बोली चलते हैं। सुन भाई अभिजीत एन साधना सरगम द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स इसी रेडियो स्टेशन के जरिए हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है की ओर हम आप बोली चलते हैं। सुन भाई अभिजीत एन साधना सरगम द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स इसी रेडियो स्टेशन के जरिए हमेशा आपके लिए पेश किया जा रहा है।

मंगलवार का दिन है, 4 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं अलका हरिहरन एंड जसविंदर नरूला की आवाज में द मूवी जुदाई। अलका हरिहरन एंड जसविंदर नरूला की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

जुदाई फिल्म का गीत भी शुआ है अलका हरिहरन एंड जसविंदर नरूला की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना। सुन वालो, मौसम काफी हसीन काफी खूबसूरत सुहाना मौसम है, तो चले आज की प्रोग्राम में हम आपको ये गाना सुनाते हैं। काफी दिनों के बाद द राजंस एल्बम में से एक गाना आप सभी सुनने वालों के लिए। इस गाना के बाद प्रोग्राम में होगा कुछ खबरें के साथ न्यूज, मौसमी समाचार और फरकियर्स इंफॉर्मेशन होगा। द राजंस का खास एल्बम में से ये

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में

सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुन वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चल

नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों में थे कि उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना।

बस और अनुराधा पोटवल के आवास में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

शर्मा और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना क्यों हो रहा है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

एक फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा से है बाकी। उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश।

सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में।

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

नजर का पहला प्यार, फिल्म का नाम सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा करता हूं कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम फिर मिलेंगे। गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई है अभिजीत की आवाज में, अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है खास तौर पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम था दहलीज। उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। चले प्रोग्राम में फिल्म दारिंदा की ओर। यशुदास और कंचन की आवाज में एक खास गाना आप तक पेश किया जा रहा है। उससे पहले ये छोटा सा डायलॉग।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हों, हजारों साल बीत गए हों। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

अंजन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई, हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर और किशोर कुमार की आवाज में अब के बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्म दीदार। दीदार फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

परमेश्वर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज़ में पेश किया जा रहा है और अब की बार फिल्म का नाम होगा दीवार। तो चलिए मिलकर गाना को सुनते हैं फिल्म दीवार जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। ऐसे फिल्म दीवार गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश

द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश जी की आवाज में और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम पतंग।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, एक और बड़ी ही खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद रफी की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूं।

0: प्यार फिर आया।
1: रेडियो वेस में इसके जरिए परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में जो फिल्म फिर वही दिलाया हूँ, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत महमूद और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्द फिल्म अजनबी खजांदर आरडी बर्मन लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वास्तव लीजिए फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर। एन अर्द फिल्म बागी 3 कम्स खजांदर शान एन रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस आयो द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड आयो द फिल्म लव मैरिज कम थोड़ा गीता दत्त करीब आओ ना।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमड़ा निमड़ा।

मिम्मी से आपने सुना श्रेया घोषाल और एआर रहमान की आवाज में परम सुंदरी, और अब आप सुनिए रहना है तेरे दिल में से, सच कह रहा है।

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का टाइटल सॉन्ग आपने सुना दर्शन रावल और रोचा कोहली की आवाज में। और अब आप सुनिए के और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म प्यार में कभी कभी से। दिल से मेरे दूर न जाना तुम मेरी खुशी।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना बेहतरीन गाना फिल्म भावना से। मेरे दिल में तू ही तू है, दिल की दबा क्या करूं, दिल भी तू है जहाँ भी तू है, तुझ पे फिदा क्या करूं। अगला गाना है फिल्म 14 फेरे से। फिल्म 14 फेरे से आप सुनिए गोरी चढ़के।

तुझ में क्या है दीवाने, खसौंदर किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर कुम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले, हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग, हमरा इज इट लीचे।

शर्माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

वासुदेव फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसका सहोदर उदित नारायण एंड अलका याचिक इनत प्रोग्रामा गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने मन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे, जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्य फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्य फिल्म फना कोमदा खसों दौर कैलाश खेर एशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मैं

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

बी स्काई, फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरिहरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।